भीमेश्वर को मेला बेड़बाइये को बेला बुझो ए भीमेश्वर को मेला बेड़बाइये को बेला लाई देव माया ए साईनी कर्मानो पार गईना भीमेश्वर को मेला बेड़बाइये को बेला।

0: मात्रै हो
1: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।
2: कृषि विकास बैंक
3: तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक।
4: आईएमई रेमिट देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर वन रेमिटेन्स कम्पनी।
5: आईएमई गरौं

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 0064 20 670 मोबाइल नम्बर 98 456 2038।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज।